पैना साढ़े सात ले छुदा जय श्री पशुपति नाथ मधुखी को गर्नु होस् सायदा।

केती बेला मैचन की गर दयोलिन पीढ़ी मा बसेरा के कुरा गर्दी हो कही

찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच कक्का।